शुभ प्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से श्रोता हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हुए हैं और इसी के साथ शुरू होते हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2026 के जून महीने की 24 तारीख है और दिन है बुधवार। और हमारे इस पहली प्रसारण सभा के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ है प्रसारण अधिकारी थी तांगजांग, तकनीकी अभियंता गोलो कालो और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी और मैं आपकी रेडियो साथी कविता। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। श्रोता दोस्तों, आगे के कार्यक्रमों के लिए कृपया बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।

और आइए एक नजर डालते हमारी आज की इस पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ओर। 6 बजते ही आप श्रोता सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 6:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम भक्ति गीत। आज इस प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे धोनी पोलो भक्ति गीत। गालू श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप श्रोता सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आपातानी श्रोताओं के समाचार के बाद आप सुन पाएंगे 7:15 पर प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागीन श्रोताओं का समाचार। सात बजकर 40 मिनट पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम सदाबहार। 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिलांग केंद्र द्वारा प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। प्रोग्राम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 9:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी गपशप, जहां हम करेंगे बॉलीवुड की खबरों की बातें, मूवी रिव्यूज और ओटीटी अपडेट्स के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। 10:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Lufan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks on this over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
0: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said that the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. U.S. Secretary of State Marco Rubio said lasting peace and stability in West Asia cannot be achieved as long as Iranian-backed proxy groups continue launching attacks and engaging in militant activities across the region. Speaking to reporters upon his arrival in Abu Dhabi as part of his visit to the Persian Gulf region, Rubio emphasized that discussions over a Lebanon ceasefire are separate from ongoing negotiations with Iran. He added that he had recently spoken with Lebanese President Joseph Aoun alongside U.S. Vice President J.D. Vance and that the U.S. officials were currently engaged on the ground in Lebanon. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में फिर से स्वागत है। और आइए आप सुनते हैं हमारा प्रोग्राम भक्ति गीत। आज इस प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे दोनी पोलो भक्ति गीत ताबा काकू एवं साथियों के आवाजों में।

आप सुन रहे थे दोनी पोलो निशी भक्ति गीत। इसी के साथ ही प्रोग्राम भक्ति गीत अब यही संपन्न होता है। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। और आइए अब सुनते हैं गालुक श्रोताओं का समाचार।

0: 2-0 లోకి తుగుం గేక్లా రౌండ్ ఆఫ్ 32 లో క్వాలిఫై మేంతు. యుఎస్ఏ సాంతా క్లారా లో గ్రూప్ జే మ్యాచ్ అల్జీరియా ఒక జోర్దాన్ తుకా మీన్స్ నమ్ అల్జీరియా గా జోర్దాన్ 2-1 లోకి తుగుం గేక్ బా అమ్లా సిన్ మే పజితా తు. పపుంపరేం కితలా ఊగ స్టేట్ హోక హామ్ని డిస్ట్రిక్ట్ లో దొయ్ దో గుమ్ గుమ్లా దోయా క్యాగ్లా ఒక నిదు మాజ్ బె ఒదె దో ఎన్స్కాసిలా ఎట్లా కా అందులా ఇటానగర్ మెట్రోలోజికల్ సెంటర్ గద్ద ఎల్లో ఎలర్ట్ గో జిలెన్ జిట్టు కేతన్ గద్ద హిర్గ గలో మెంకెన్ అగొమ్ మెంజిసా ఎగె.
1: తన గద్దెం లెకిన్ గో
2: आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार. गालो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं आप आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर. इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं गालो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम. और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में. और अब समय हो चला है हमारे प्रोग्राम सुबह सवेरे का, जहां हम बात करते हैं आपके हेल्थ से जुड़ी बातों पर. जी हाँ, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, योगा के बारे में इस प्रोग्राम में बात करते हैं और साथ ही हम आपका मनोरंजन करते हैं हिंदी फिल्मी गानों के साथ. तो आइए आज इस प्रोग्राम में सुनते हैं ये छोटी सी जानकारी, योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभदायक हो सकता है, इसके बारे में आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ ही सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने. जी हाँ, योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक रामबाण औषधि है. ये तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करता है, हमारी जो एकाग्रता है उसको बढ़ाती है और मस्तिष्क में शांतिदायक रसायनों के स्तर को बढ़ाकर डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने में बहुत ही मददगार होती है. जी हाँ, योग के बहुत सारे लाभ हैं. तो तनाव कम कर सकता है योग. योग शरीर में कॉर्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन के स्तर को कम करके मानसिक शांति प्रदान करता है. नियमित अभ्यास से डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आती है. साथ ही ये आपकी एकाग्रता और स्पष्टता को बढ़ाती है. ये मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है जिससे सोचने की क्षमता और फोकस बेहतर होता है. साथ ही योग में आत्म जागरूकता बढ़ाती है जिससे आप कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित रह सकते हैं. जी हाँ, योग जो है हमारे भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है. आगे भी हम बात करेंगे योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है, पर आइए प्रोग्राम में सुनते हैं पहला गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म जज्बा से.

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सुबह सवेरे में और बात हो रही है योग के बारे में। जी हाँ, योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभदायक होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। योग जो है, सोने से पहले अगर आप श्वास क्रियाएं करने से आपकी जो तंत्रिका तंत्र शांत होता है और नींद की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ही सुधार आता है। जी हाँ, बेहतर नींद के लिए भी योग काफी जरूरी है। प्राणायाम यानी कि श्वास नियंत्रण, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति मन को शांत करने और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने में सबसे प्रभावी होता है। साथ ही नियमित ध्यान यानी कि मेडिटेशन मस्तिष्क के भावनाओं से जुड़े हिस्सों को शांत करता है। श्वासन, बलासन और वृक्षासन स्थिरता और मानसिक संतुलन के लिए बेहतरीन है। अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप पहली बार कर रहे हैं योग, तो आप किसी योगा ट्रेनर की जरूर मदद लें। तो आपने जाना जैसे कि योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य

आपके लिए बहुत ही प्रभावी औषधि है। ये जो है हमारे जो स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स को ये कम करता है, साथ ही हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क में शांतिदायक रसायन के स्तर को बढ़ाकर हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने में काफी मदद करता है। और आइए अब सुनते हैं ओके जानू का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

योग में श्वास अभ्यास और ध्यान पर जोर दिया जाता है। ये दोनों ही मन को शांत और स्थिर करने में सहायक होते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि योग से मानसिक लाभ मिलते हैं, जैसे कि चिंता और अवसाद में भी कमी होती है। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये वास्तव में आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत और बड़ी होती है। जब आप योग करते हैं तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं नए संबंध विकसित करती है और मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सीखने और याददाश्त जैसी संज्ञात्मक क्षमताएं बेहतर होती है। योग मस्तिष्क के उन हिस्सों को मजबूत करता है जो हमारी स्मृति, ध्यान, जागरूकता, विचार और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे मस्तिष्क के लिए वजन उठाने की कसरत समझे। शोध से ये भी पता चलता है कि योग और ध्यान से तर्क, निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति, सीखने की क्षमता, प्रतिक्रिया समय और मानसिक तृष्णता के परीक्षणों से सटीकता जैसे कार्यों में सुधार हो सकता है। सभी प्रकार के व्यायाम तनाव हार्मोन के स्तर को कम करके एंडोर्फिन नामक सुखदायक रसायनों के उत्पादन को बढ़ाकर और मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति बढ़ाकर आपके मूड को बेहतर बना सकता है योग। लेकिन योग के कुछ अतिरिक्त लाभ भी हो सकते हैं। ये गाबा नामक मस्तिष्क रसायन के स्तर को बढ़ाकर मूड को प्रभावित कर सकता है और बेहतर मूड और कम चिंता से जुड़ा है।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

103.1 MHz में, और अब समय हो चला है हमारे प्रोग्राम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट का। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं यहाँ की स्थानीय अखबारों की सुर्खियों से, आपको हम अवगत कराते हैं और साथ ही सुनाते हैं हिंदी फिल्मी गाने। तो आइए समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर चलते हैं। गोफ टू प्रॉप नैरिस क्राइसिस गवर्नर। राज्यपाल केटी पटनायक ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नैरिस संकट की गहन जांच की जाएगी और इस अराजक घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी लोगों के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने बीते कल लोकभवन में नैरिस के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र नाथ एस के साथ हुई बैठक के दौरान यह बात कही। बैठक में नैरिस्ट के निदेशक ने राज्यपाल को परिसर में हुई हालिया घटनाओं और संस्थान द्वारा सामान्य स्थिति बहाल करने तथा छात्रों और संकाय सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। वहीं दूसरी सुर्खी है, EKSWCO demands uniform compensation rate under package 1-5 of Lada Sarli highway project। ये सुर्खी है द अरुणाचल टाइम्स की। ईस्ट कामेंग सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संगठन ने राज्य सरकार से पूर्वी कामेंग जिले में लादा सरली फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना के पैकेज 1-5 के तहत भूमि, वृक्षों, फसलों और अन्य प्रभावित संपत्तियों के लिए एक समान मुआवजे की दर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। सोमवार को भूमि प्रबंधन आयुक्त को सौंपे गए एक ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि समान स्थलाकृतिक स्थितियों और भूमि अधिग्रहण की प्रकृति के बावजूद पूर्वी कामेंग और पड़ोसी जिलों जैसे कोलोरियांग और बीचों के बीच मुआवजे की दरों में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने फैसला सुनाया कि राज्य के सत्कर्ता विभाग द्वारा राज्य के एक वरिष्ठ वन अधिकारी को मंजूरी प्रमाण पत्र देने से इनकार करना प्रथम दृष्टया भेदभाव का मामला है और राज्य सरकार को सत्कर्ता मंजूरी और विभागीय पदोन्नति समितियों की समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। APSHRC के अध्यक्ष बामांग टेगो ने अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने उप वन संरक्षक मोरी रिबा द्वारा दायर शिकायत का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया। इस पर द अरुणाचल टाइम्स की सुर्खी है, डिनायल ऑफ विजिलेंस क्लीयरेंस प्रिया फेशी केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन APSHRC। आगे भी हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खी से अवगत कराएंगे, पर आइए पहले सुनते हैं ये गाना श्रेया घोषाल एवं मनोज मुंतशिर की आवाज में, फिल्म रुस्तम से।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में और हम आपको बता रहे हैं लोकल डेलीज की हेडलाइंस। आगे है, ऊपरी सुबनसिरी जिले के निवासियों ने सुबनसिरी नदी पर बने पाकम कॉलोनी के सस्पेंशन ब्रिज की जर्जर हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। खबरों के मुताबिक पुल की जर्जर हालत के कारण उसका ढांचा ढहने की कगार पर है। स्थानीय निवासियों ने सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि पुल की मरम्मत, प्रतिस्थापन और आवागमन प्रतिबंधित करने में किसी भी देरी से एक बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि हजारों लोग जोखिमों के बावजूद प्रतिदिन इस पुल का उपयोग करते हैं। इस पर अरुणाचल टाइम की सुर्खी है, सुबनसिरी सस्पेंशन ब्रिज ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स, रेसिडेंट्स सिक सेफ्टी मेजर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने ईटानगर स्थित मेजांग एकेडमी ऑफ पेस्ट्रीज आर्ट्स एंड बेकिंग साइंस के सहयोग से पापुमपारे जिले की जिला जेल में की महिला कैदियों के लिए बेकिंग

और पेस्ट्री पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रतिभागियों ने कुकी बनाना, पेस्ट्री तैयार करना, केक बनाना और केक सजाने जैसी व्यवहारिक तकनीकें सीखी। साथ ही खाद्य स्वच्छता और अधिमिता के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया। APSCW की अध्यक्ष यलम तागा बोरंग और DSP जेल सिटी लोम्बी ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बेकिंग सीखकर कैदी एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और जेल से रिहा होने के बाद अपने समुदायों से सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। इस पर अरुणाचल टाइम की सुर्खी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बेकिंग हेल्ड फॉर फीमेल जेल इनमेट्स।

राहत फतेह अली खां की आवाज में आपने सुना नमस्ते इंग्लैंड का ये गाना। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में खामोशिया फिल्म से।

इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट से आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे तागीन श्रोताओं का समाचार।

675 क्लाड्स पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं तागिन श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए अब सुनते हमारा प्रोग्राम सदाबहार। इस प्रोग्राम में हम आपको मौसम के मिजाज से रूबरू कराते हैं और साथ ही सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। तो आइए शुरू करते हैं इस गाने के साथ इस प्रोग्राम का। आशा भोसले एवं मोहम्मद अजीज की आवाज में आइए सुनते हैं मुद्दत फिल्म का ये गाना।

मौसम के मिजाज की अगर हम आज बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। 56% बारिश दिखा रही है आज के मौसम में। और हवा की रफ्तार की अगर हम बात करें तो आज 3 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार रहेगी। साथ ही आज सूर्य उदय हुआ 4:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:13 पर। और आइए प्रोग्राम में आप सुनते हैं हरिहरन की आवाज में साहिबा फिल्म का ये गाना।

0: दोस्तों, आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में जूली फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे थे प्रोग्राम सदाबहार, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज। उसके बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिलांग केंद्र द्वारा प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे प्रोग्राम हेलो ईटानगर के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच

0: नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने

0: के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और

0: Gynnig ydy a gas fy nisio long, a bod wans pe o ras pa sawl pwynio, bwyt na'r mitau hwn mynd i'n wyf, o bwyr yn gadw pras pa andrw bod sawl gila hertz. Pila ar wyn ysgol i gyd program drwy'n ilan bag a DTH, mac y news on air app. Gystep gyda cymenni a phi barod o gyda'r long nosgab, mae'n dach ydy gystep.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली एवं शिलांग के द्वारा प्रसारित समाचारों को. आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में. और आइए अब सुनते हैं हमारा प्रोग्राम हेलो ईटानगर.
2: हेलो ईटानगर.

हेलो ईटानगर, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमारे सब प्रोग्राम में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे हर्ब के बारे में, जी हाँ, एक ऐसे

जड़ी बूटी के बारे में जो बहुत ही आपके त्वचा से लेके आपके बालों तक के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं ये जड़ी बूटी एक लाभों का भंडार हो सकती है। अपनी सुगंधित पत्तियों के साथ रोजमेरी आपके भोजन में सिर्फ एक स्वादिष्ट चीज नहीं है। रोजमेरी की पत्तियों के फायदे सिर्फ आपके रसोई घर में इस्तेमाल ही नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, जिससे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तक शामिल है। जी हाँ, रोजमेरी के पत्तों के भी बहुत सारे लाभ हैं। इनके लाभों के बारे में आगे हम बात करेंगे, पर आइए पहले सुनते हैं प्रोग्राम में ये गाना सारिका कपूर एवं कुमार सानू की आवाज में, हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम हेलो ईटानगर में। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे रोजमेरी प्लांट्स के बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ, आइए आगे जानते हैं रोजमेरी की सूखी पत्तियों के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। रोजमेरी की पत्तियों में मैग्नीज की मात्रा अधिक होती है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो आपके मैग्नीज आपके शरीर में रक्त के थक्के बनाने में भी मदद करता है, जिससे चोटें तेजी से ठीक होती हैं। रोजमेरी में कॉनार्सिक एसिड होता है, जो अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे अध्ययनों के अनुसार कॉर्निक्स एसिड शरीर में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा कर सकता है और ट्यूमर के विकास के जोखिम को भी कम कर सकता है। रोजमेरी में मौजूद कॉर्निक्स और रोजमेरिनिक एसिड ने मजबूत जीवाणुरोधी एंटीवायरल और एंटीफंगल गुणों का प्रदर्शन किया है। रोजमेरी का नियमित सेवन संक्रमण से लड़ने में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में समर्थन कर सकता है और संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। सीमित शोध से पता चलता है कि रोजमेरी इसके लिए फायदेमंद

हो सकती है, जैसे कि अवसाद, तनाव और भावनात्मक परेशानी से राहत दिलाता है। संभवतः मूड और संज्ञात्मक कार्य में सुधार करने की इसकी क्षमता के कारण। और प्रोग्राम में आगे आइए सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये गाना अलका याग्निक एवं हरिहरन की आवाज में।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही प्रोग्राम हेलो ईटानगर अब यही समाप्त होती है और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
3: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने रविवार को रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति को रोका और इंटरनेट भी वहां बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से भारत

0: are aimed at confusing and misleading the public. The government said that it is continuously monitoring the implementation of the ethanol blending program in consultation with oil marketing companies, automobile manufacturers, fuel testing agencies and other stakeholders. It said that since the introduction of E20 petrol, no widespread issues of engine failure or vehicle breakdown attributable to ethanol blending have been reported. India strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve. On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में. और आइए अब सुनते हैं हमारा प्रोग्राम फिल्मी गपशप. जी हां, प्रोग्राम फिल्मी गपशप में हम आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की दुनिया की और साथ ही हम बताते हैं मूवी रिव्यूज और ओटीटी अपडेट्स. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम बॉलीवुड की खबरों से. जी हाँ, बॉलीवुड की खबरों में है दिया मिर्जा का घर नेचर के करीब होने का एहसास कराता है. एक्ट्रेस का घर इको फ्रेंडली चीजों से बना है. घर में वुडन का खास इंटीरियर डिजाइन हुआ है. विनोद खन्ना रोमांटिक सीन के दौरान कई बार बहके हैं. माधुरी दीक्षित और डिंपल कपाड़िया संग हुए उनके रोमांटिक सीन्स ने सेट पर बवाल मचाया था. इसकी आप पूरी खबर आप देख सकते हैं आज तक के पन्ने पर. इंटीमेट सीन में बार बार बहका एक्टर, हीरोइन के काटे होंठ बहा खून. अंशुला कपूर की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. अंशुला और रोहन ठक्कर के प्री वेडिंग फंक्शंस में परिवार और दोस्त शामिल होकर खुशियों का जश्न मना रहे हैं. उनकी शादी 6 जुलाई को मुंबई में धूमधाम से होगी. और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम में ये गाना सिंघम फिल्म से. आवाज है श्रेया घोषाल एवं अजय गोगावले की.

दोस्तों आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम फिल्मी गपशप में और मैं हूं आपकी दोस्त कविता। और आइए चलते हैं प्रोग्राम में आगे बॉलीवुड की खबरों की ओर। इंटरनेट पर अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शन की फोटोज छाई हुई है। घर वालों के चेहरे पर लंबी मुस्कान, खुशियों के साथ ये पल सभी को इमोशनल भी कर रहा है। माता की चौकी में नाचे बोनी बहन अंशुला को देख इमोशनल हुए अर्जुन। प्रोग्राम में आइए आगे सुनते हैं श्रेया घोषाल एवं उदित नारायण की आवाज में सुपर 30 का ये गाना।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम फिल्मी लहर, और फिल्मी लहर में आइए आगे अब सुनते हैं मूवी रिव्यूज। जी हाँ, मूवी रिव्यूज में आज रिव्यू हम करेंगे कॉकटेल टू के बारे में। कॉकटेल टू शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदना की ये फिल्म है, जिसका निर्देशक है होमी अजानिया और निर्माता दिनेश विजान, लव रंजन अंकुर गर्ग। कॉकटेल टू 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का ना तो रीमेक है और ना ही ये स्वीकल। मेकर्स इसे सिर्फ स्पिरिचुअल सीक्वल बता रहे हैं, मतलब कहानी नई है लेकिन दोस्ती

यार, दिल टूटना और रिश्तों की उलझन वाला वही पुराना फॉर्मूला फिर से उठाया गया है। अब यहाँ एक मजेदार चीज होती है, आजकल फिल्म इंडस्ट्री में नया तरीका चल पड़ा है, पुरानी हिट फिल्म का नाम इस्तेमाल करो, उसी तरह का माहौल बनाओ और रिलीज से पहले बोल दो कि तुलना मत कीजिए। लेकिन भाई, तुलना तो होगी ही, नाम भी वही, रिश्तों का झोल भी वही, बेचने की कोशिश भी वही, तो दर्शक पहले वाली को याद क्यों ना करें। साल 2012 में होमी अजानिया कॉकटेल लेकर आए थे, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना फैंटी तीनों के रिश्ते उलझे हुए थे, गलतियां थी, दिल टूटे थे और कई फैसले ऐसे थे जिनसे आप सहमत भी नहीं होते थे। लेकिन फर्क ये था कि सब कुछ सच्चा लगता था, उन किरदारों में कमियां थी लेकिन कम से कम नकली नहीं लगते थे। अब 14 साल बाद होमी फिर लौटे हैं, इस बार शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदना के साथ। इरादा शायद आज की पीढ़ी के रिश्तों पर कुछ नया कहने का था, लेकिन फिल्म देखकर ऐसा लगता है जैसे पहली कॉकटेल से सारी भावनाएं निकाल ली गई और बदले में सिर्फ विदेशी लोकेशन, महंगे कपड़े और चमक दमक डाल दी गई है। मतलब बोतल वहीं रखी गई है लेकिन अंदर का स्वाद पूरी तरह बदल चुका है। कॉकटेल 2 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। शाहिद कपूर वैसे अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, और शायद इसीलिए उन्हें यहां देखकर निराशा ज्यादा होती है। पूरी फिल्म में कई जगह ऐसा लगता है जैसे वे किरदार निभाने नहीं, हर सीन में ये साबित करने आए हैं कि देखो मैं कितना अभिनय कर सकता हूं। समस्या यह है कि कई जगह ये अभिनय नहीं, सीधी ओवर एक्टिंग लगने लगती है। हल्के फुल्के सीन्स में वे हंसने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हंसी आने के बजाय कई बार अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। जहां भावुक होना चाहिए वहां भी कई जगह आंखों में आंसू कम और चेहरे पर जोर ज्यादा दिखाई देता है। रश्मिका मंदना इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। सबसे पहली दिक्कत है उनका लहजा। हिंदी बोलते वक्त कई जगह उनका तरीका इतना अटपटा लगता है कि गंभीर सीन्स भी असर नहीं छोड़ पाते। फिल्म उन्हें मासूम दिखाना चाहती है लेकिन कई जगह वह मासूम कम और बेवजह उलझी हुई ज्यादा लगती है। कृति के सामने उनका किरदार इतना कमजोर लिखा गया है कि कई सीन्स में वह असर छोड़ ही नहीं पाती। फिल्म साफ तौर पर कृति सनन को इस पीढ़ी की वेरोनिका बनाना चाहती है लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। पहली कॉकटेल में दीपिका पादुकोण को वेरोनिका वाला किरदार टूटा हुआ था, अकेला था, बिखरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर मासूमियत थी, आप उसके दर्द को महसूस कर सकते थे। यहां कृति का किरदार आकर्षक, ग्लैमरस और कॉन्फिडेंस है लेकिन इमोशनल रूप से पूरी तरह खाली है। जहां पहले फिल्म की वेरोनिका टूटी हुई लेकिन सच्ची लगती थी, वहां कृति का किरदार कई जगह जरूरत से ज्यादा चालाक लगता है। ऊपर से ग्लैमर इस कदर ठूसा गया है कि कई बार लगता है फिल्म रिश्तों पर नहीं, फैशन ब्रांड्स पर बनी है। सपोर्टिंग कास्ट के साथ तो फिल्म ने और भी ज्यादा नाइंसाफी की है। टिंकू तलसानिया जैसे अनुभवी अभिनेता को सिर्फ शाहिद कपूर का पिता बनाकर खड़ा कर दिया गया है, जैसे उनकी मौजूदगी सिर्फ फ्रेम भरने के लिए हो। नीलू कोहली जैसी अच्छी अभिनेत्री को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें बस शादी वाले माहौल में भीड़ बढ़ाने के लिए रख लिया गया है। किरदार ऐसा कि अगर फिल्म से हटा भी दे तो शायद किसी को फर्क ना पड़े। पुलकित सम्राट भी कैमियो में आते हैं लेकिन उनका किरदार भी कहानी में कोई खास फर्क नहीं कर पाता। तो आपने सुना ये मूवी रिव्यू कॉकटेल 2 पर। आइए अगला गाना सुनते हैं, फिल्म आशिकी 2 से आवाज है अरिजीत सिंह की।

आपने सुना तुम मिले ये फिल्म का गाना नीरज श्रीधर की आवाज में। दिल तक

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

डियर लिसनर्स, हम आपको बता दें आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम फिल्मी गपशप में। और आइए अब सुनते हैं गोरी तेरे प्यार में फिल्म का ये गाना नितेश कदम एवं श्रुति पाठक की आवाजों में।

क्यों हुआ है दिल डफर। आपने ये गाना सुना। आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम फिल्मी गपशप में। और आइए अब चलते हैं ओटीटी अपडेट्स की ओर। राजा शिवाजी, रितेश देशमुख अभिनीत ये शानदार फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और वीरता को दिखाया गया है। परफेक्ट फैमिली, सोनी लीव पर आज से परफेक्ट फैमिली वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है। इसमें मनोज पहवा, नेहा धूपिया और सीमा पहवा मुख्य किरदारों में हैं। लॉकअप सीजन 2, कंगना रनौत द्वारा होस्ट किया गया यह विवादित रियलिटी शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रहा है। मिर्जापुर सीजन 3, बहुप्रतीक्षित क्राइम ड्रामा सीरीज मिर्जापुर का नया सीजन 5 जुलाई को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाला है। और आइए प्रोग्राम में आगे सुनते हैं ये गाना, प्यार ले प्यार दे।

इका सिंह देव नेगी की आवाज में आपने सुना जीनियस का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम फिल्मी गपशप में, और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल एवं सोना मोहापात्रा की आवाज में आई हेट लव स्टोरी का ये गाना।

0: राजनीति फिल्म का ये गाना आपने सुना अंतरा मित्रा मोहित चौहान की आवाज में। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे थे प्रोग्राम फिल्मी गपशप। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिगेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेतरी तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम रेडियो डिमांड में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दामिनी फिल्म के इस बेहतरीन गाने के साथ। इस गाने को गाए है कुमार सानू एवं अलका याग्निक ने, और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है गुम मई भागरा ने। ये हमें लिखते हैं आलू हिगी भागरा गांव से। आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड में। इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9436887808 पर। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9436887808 पर। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर हिंदी फिल्मी गाने सुन सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़िए। और आइए अगला रिक्वेस्ट हम लेते हैं। ये हमें लिखते हैं हिगी बागरा गांव से, आलो से जुमकर बागरा। इन्होंने सुनना चाहा है लता मंगेशकर के आवाज में फिल्म मुकद्दर का, सिकंदर फिल्म का ये गाना।

लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड में, और आपका सुबह बेहतर हो, खुशनुमा हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। आपके रिक्वेस्ट को लेकर, जी हां, आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस नंबर पर 9436887808। इस नंबर पर आप हमें रिक्वेस्ट कर हिंदी फिल्मी गाने सुन सकते हैं, और साथ ही कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो भी हमें लिख सकते हैं। अगला जो रिक्वेस्ट है बहुत ही खास है, इन्होंने हमें लिखा है उत्तराखंड से, रोहित ने। इन्होंने सुनना चाहा है बीवी नंबर वन फिल्म का ये गाना अनुराधा श्रीराम एवं अभिजीत की आवाज में।

उम्मीद करती हूँ आपको ये गाना पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं ये गाना जिसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी है कार्बी आंगलोंग लांकांगसम से। ये हमें

देखते हैं टेंशन क्रो रोज मेरी तरन भी आतुर क्रो सालो एक क्रो। इन्होंने सुनना चाहा है सोनू निगम एवं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का ये गाना।

आप सुन रहे हैं ये गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म गज गामिनी से। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है सोनितपुर असम से अमल अंजलि आवाज और कविता ने। इन्होंने सुनना चाहा है गज गामिनी का ये गाना। उम्मीद करती हूँ आप हमें सुन रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे।

श्रोता दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां हम आपकी रिक्वेस्ट के सॉन्ग नंबर्स प्ले करते हैं। और अगली जो रिक्वेस्ट हमें भेजी है ऋतु ने, हमें लिखा है इन्होंने, हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गाना सुनना चाहा है। आवाज है के एवं डोमिन क्यू के। इस फिल्म के लगभग सभी गाने काफी हिट रहे, तो आपके पसंद का ये गाना आइए सुनते हैं। उम्मीद करती हूं आप भी हमें सुन रहे होंगे।

श्रद्धा दोस्तों, आइए सुनते हैं आशा भोसले एवं उदित नारायण के आवाज में लगान फिल्म का ये गाना। इस गाने की हमें रिक्वेस्ट आई है नम्रता जायसवाल जी ने, इन्होंने हमें लिखा है गोलाघाट असम से। आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

आज के इस प्रोग्राम का लास्ट रिक्वेस्ट हम लेते हैं आरव कुप का. इन्होंने बॉर्डर टू का गाना सुनना चाहा है, साथ ही उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है एफएम रेडियो परिवार को. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आपके विश में शामिल किया. और आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना सोनू निगम, मिथुन एवं मनोज मुंतशिर की आवाज में फिल्म बॉर्डर 2 से.

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए थे प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड में। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज एफएम के प्रोग्राम्स। जारी रहेगा, आपके साथ होगी आरजे कानिक गिचिक। और आज के इस पहले प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी तीतांजांग, तकनीकी अभियंता गोलो कालो और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। तो आज के लिए आपकी रेडियो दोस्त कविता को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: चल जाएगा। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हमारी पहली प्रसारण सभा और आपको बता दूं उस सभा में आपका साथ निभाया आरजे कविता ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब नया वक्त है, नई आवाज है और एक नया अंदाज है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का दूसरी प्रसारण सभा में और इस सभा की मेजबानी कर रही हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी गिचिक कनिक। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता टिम टिम। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्मी लहर का। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के रंग, फिल्मी कहानियों के संग और सुरों की मीठी लहरों के साथ हम लेकर आए हैं एक और खूबसूरत म्यूजिकल सफर। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसमें प्यार है, शरारत है और दिल की वो उलझन भी जो अक्सर मोहब्बत में हो जाती है। फिल्म आर राजकुमार का ये रोमांटिक ट्रैक धोखाधड़ी अपने मधुर धुन और दिल को छू लेने वाली आवाज के लिए आज भी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह और पलक मुचाल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और फिल्म में नजर आते हैं शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। तो दोस्तों, दिल को थोड़ा सा रोमांटिक मोड में ले आइए और गुनगुनाइए इस प्यारी सी गीत को। आइए सुनते हैं इस गीत को।

चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही फिल्मी लहर कार्यक्रम में अब बारी है एक और गीत के। आपको बता दूं, अगला गीत के बोल है दिल का क्या, और इस ये गाना वर्ष 2025 में आई बॉलीवुड फिल्म मेट्रो इन दिनों का एक बेहद भावुक और लोकप्रिय गीत है। दोस्तों, ये गाना प्यार में टूटने और दिल के दर्द को बयां करता है। आपको बता दूं, इसके गायक है राघव चैतन्या, संगीतकार है प्रीतम और गीतकार है अनुराग शर्मा। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी लहर यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज पर।

0: kiss me under.
1: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
2: श्रोतो, इसी के साथ ही कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज यहीं पर समाप्त होती है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पर। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम नोटिस परिचय का।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM के 103.1 MHz पर मैं तुम्बम रीबा लीली आप सभी का हमेशा की तरह अपना कार्यक्रम अरुण परिचय के इस कड़ी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरुण परिचय जैसे

0: के नाम से ही जाहिर है, यह अरुण एफएम रेडियो ईटानगर का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की हर एक कड़ी में अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में तमाम जानकारियां देती आई हूं। और इस कार्यक्रम की हर एक कड़ी में अपने खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश के किसी न किसी अनोखी जनजाति की निराली संस्कृति, परंपरा एवं त्योहार आदि के बारे में आपको विस्तृत जानकारियां प्रदान करती हूं और साथ ही उस विशेष जनजाति से जुड़ी लोकगीत भी यहां पर प्रस्तुत करवाती हूं। कार्यक्रम का निर्माता है ज्ञाति हंगू। तो चलिए आज अपने इस कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं आप सभी को थाई खामती जनजाति के सांस्कृतिक त्योहार से रूबरू कराती हूं और साथ ही इस जनजाति से जुड़ी लोकप्रिय लोकगीत भी आपको आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। थाई खामती के सांस्कृतिक त्योहार। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके के थाई खामती और सिंगफो जनजाति के लोग सांगकेन त्योहार मनाते हैं। यह रंगीन त्योहार है सांगकेन, जिसमें रंगीन पानी होली की तरह एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। यह त्योहार में मार्च के अंत में और अप्रैल के प्रारंभ में मनाया जाता है। इस त्योहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालते हैं और इसे स्वच्छ जल से मंत्रोच्चारण के साथ अच्छी तरह धोते हैं। संपूर्ण पूजा में पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। खुले मैदान में सामूहिक श्रमदान से एक छोटा सा घर बनाते हैं तथा इसे तरह तरह के फूलों, पत्तों और रंगीन कागजों से सजाते हैं। तत्पश्चात बड़े समारोह के साथ भगवान बुद्ध की धुली हुई मूर्ति वहां लाकर उस घर में स्थापित करते हैं। 3 दिनों तक यह मूर्ति इसी घर में रहती है। समस्त ग्रामीण तथा बौद्ध पुजारी इन 3 दिनों भगवान बुद्ध की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं। इसी बीच पूजा के एक अंग के रूप में ही समस्त नर नारी एक दूसरे पर रंगीन पानी डालते हैं। मेहमानों का अपने घरों में स्वागत करने के लिए लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं। 3रे दिन जब विहार के वेदी पर सारी मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं, उस समय सभी लोग अपने से बड़ों के पैरों पर तथा बौद्ध पुजारियों के चरणों पर झुककर प्रणाम करते हैं और उनसे आशीष प्राप्त करते हैं। सभी लोग स्वच्छ मन से अपने बड़ों की प्रार्थना करके उनसे आशीष पाते हैं। इससे उनके मन तथा शरीर दोनों पवित्र होते हैं। चूंकि यह त्योहार ऋतुराज बसंत के समय मनाया जाता है, इसीलिए लोगों में एक नई ताजगी और स्फूर्ति रहती है। इसीलिए अपनी प्रसन्नता को वास्तविक रूप देने के लिए लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और रंगीन पानी एक दूसरे पर फेंकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। इस त्योहार की तिथि निश्चित होने के साथ साथ लगभग 15 दिन पूर्व से ही गांव के समस्त नवयुवक इस पूजा की तैयारी में, जैसे पूजा के लिए नए घर बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने में तथा नाच गान का अभ्यास करने में लग जाते हैं। क्यांग फ्रा यानी कि नए घर में पहले दिन बौद्ध पुजारी मंगल स्रोतों को, मंत्रों को पढ़ते हैं। उसके बाद वहां उपस्थित नवयुवक और युवतियां उन्हीं मंत्रों को दोहराते हैं। उसके बाद बुद्ध पुजारी के साथ साथ सभी लोग बुद्ध मूर्ति को नहलाते हैं और सारे दिन एक दूसरे पर रंग और पानी फेंकते हैं। शाम को सभी लोग पुनः पूजा स्थान पर इकट्ठा होते हैं और खूब घी के दिए तथा मोमबत्ती जलाकर प्रकाश करते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही बुद्ध मूर्ति की सफाई का काम शुरू होता है तथा लोग भगवान बुद्ध को अन्न दान तथा पुष्प दान करते हैं और उसके बाद पुजारी मूर्ति को पुनः धोता है और उसे मंदिर यानी कि विहार में रख देता है। सभी लोग सामूहिक भोजन करते हैं और मंदिर तथा मूर्ति को खूब सजाते हैं। सांकेन के अतिरिक्त थाई खामती लोग जो त्योहार मनाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नावसांग सितांग। वर्षा काल प्रारंभ होने के साथ ही पूर्णमासी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। उस दिन बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की पूजा करने के पश्चात 1 महीने तक गांव से बाहर नहीं जाते। पूजा के दिन समस्त ग्रामीण बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं और तरह तरह के फल, मोमबत्ती, फूल और खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करते समय बौद्ध भिक्षु अच्छे रास्ते चलने के लिए लोगों को भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए अच्छे रास्तों पर चलने के लिए गीत गाकर समझाते हैं। सारे सितंग, यह त्योहार सितंबर अक्टूबर महीने में यानी कि पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। आज ग्रामीण बौद्ध भिक्षुओं को फल और भोजन भिक्षा के रूप में देते हैं। इस त्योहार का उद्देश्य है भूखों को भोजन खिलाना। ऐसा विश्वास है कि आज के दिन जो व्यक्ति किसी भूखे को खिलाकर संतुष्ट कर देता है वो इहलोक और लोक दोनों में कभी भूखा पेट और असंतुष्ट नहीं रह सकता, वो सदा सुखी रहता है और भावी सुख की परिकल्पना इन त्योहारों का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आपने थाई खामती जनजाति के प्रमुख त्योहार सांकेन के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की। तो चलिए अब इसी जनजाति से यानी कि थाई खामती जनजाति के एक खूबसूरत गीत का आनंद लेते हैं।
1: Yang ma nha ta mang long phong khan kham wan kang chen poi mueng mu phung kon tum khon pati manuk chia ting na dhamma mang su ho kham pa suam wang ei chen ha chau kau khao he che phom ha ku so pan lun an nang kha cha na thau ngau ta phoem ngam ngau Yang ma lu kham song ta ho kham khe ma au kan na Pun vam er khun yon pin pra ya za ka sada Lu jim chang ma kha mon chung pan hon sam ma nang ko am Yung noi soi tu ngoi tu ho kang piang sang ku muk luk oan yon Tap kwan jen cha ma no na khu Mục sáng léo nhàng phong khẩm phong tâm phơ bần yô lù hờ Trong nay ăn cầu sâu yô lù khám mà yòn Gia bấy nón con cô xì bạ Châu lắc yăng khó mọc nhí miệng chi chính khối hối ta Đủ hàng khá bù hắn bần mà nây ta Nắng này sạng xuống mâu uổng yêu hoàng Tóng trời cháu vọng kỳ hư chít ná phòn phòn Bồ năng cha yăng mù thi hồn lý mở cài Chùm lại á chính gật chính xích xóa Nó sáng chỉ già thức xoắn phòn Yoan khổ mấy hào Khun lạc bác phòi móc khỏi trên nàng Môn khàng xuống ná chế vi Thô ám đà hắc ơi Dê chàng nằm nhất đầu trướng khí hồn yon ấy xa Tăng nữa xong cháu ngấu khấy phả khởi biến chính chế phả ra. À, như khuất khuôn sáng hôn tầm nhà, lũ vẫn mô bông na phá hở con nhau. Mọng tù hô khâm, nê gầm khăn nay bày mà mâu sầu lạ. Buồn na chế vi sáng hàng khả mong nhà ngọc hô ư ồ. Giáp cậy sai sụp lục ta xoáng tròn ngọn. พดยำกำพาเจิงกาทีเมืองสู้คนตองท้อมโขในดาวยาเอคัดวงพงหายเก่าใจยนเป็นพราดต่างเหื่องมาจากเศร้าปวงลิงจิงโคยหอยตาหลักยาเจ้าไข่ผ่ารู้เหาเปื่อนเขามาย่อนน้ำมันวันนาเจวีจ่อยก่อห่มหอยพันคิดเปลี่ยนเจ้าห่มเจิงสู่ลางตาเขาเมาเมืองจอมยืนคุ้นโพปันเมียงเสียงตาคนเดืองเขามางมางลู่เหอเขียนตัวไปโหล้นสมขาชิงพันดึกทานกุมารได้คอยจัดพี่เหอเปลี่ยนพี่คนนี้หุ่นหวองจอมน้องเจ้าใจหวานพาหน่อยนี่น้องไหนกักกักจักยี่เอาช่องเจ้าของเอาตาเสียงมักคำยืนเชื่อมือยืดปุ่งหน้าชี้จะหับเอาอ้อนอยู่อันเอาชิงคุณพี่จังจีเมียกห้ามยืนมือย่องตันคือเมาเช้าเอาไปอย่าเฮาจิกทะบรมมาลิงตาสามวนกูว้าวสาธุ ให้ว่ายาตาธรรมะวันนาลูกเสาสองปีน้องผมผอมเช่นเสื่อเรื่องศรัทธาหงก่อนกาเป็นพี่น้อยพี่เมืองยึงหนูตังรู้โพมีเมียงคำก่อนหอบอมปู่ที่เดียกเปลี่ยนปล่อยพี่ปล่อยสร้างกงกลางตื้อลงปู่เชียงกองซอมชงถึงหอดที่อันมือไก่เจ้าพี่น้องรู้ตามูหงตุนจีนำมาทาอิงดาวองตื้อห้องน้องเสียงโลซอนจับยังผังมมคุณหงผัวเมียช่องตาเลื่อมเลื่องพรพรเมาเสาหันโบเงาหงเงาบุงหงหันหมักยันเอาเงาหนาพักคำหงห้องมองเหล่าเก่าจำเขาเปลี่ยนปูลิงอิงดาวองจบโคมาท้องผัวเมียในเยาลองหาเจ้าไข่ผาที่ดินเปลี่ยนชิ้นหน้าป่าต้านหล่นมวนหึงเหม่อคุณต้องเปลี่ยนเจอเย็นเดวาสุขท่าเสียงหนาวมังลาพระจอดปืนล่วงห่อหามในคันพายเหล่ากายอาจองปกกี้ตรงตรงผมกาไปหม่นโคชิโนสาวนัดลำปัดเป็นมุนชี้เฮียงจึงเกี่ยวหม่นโจมหุ่มห่วงห่างเกี่ยวนาเลสักเด็ดตัวเจ้าก่อปั้นข่อยเขาหลายปุดสองเฮียงมาทองยาจาธรรมะวันนาหัวคำงำชี้ตื้อวิเมืองโกนอยู่ก้อยมองเมื่อจานตั้งคุณตั้งนางอ้อยันเอ่ยวังเขากำมนศักดิ์เจ็บท้าเจสาโลมาเช่นคนเรื่องมงศักดิ์ลองคำเมื่อเป็นคนทีทุกทีห้องห้างตั้งนางพร้อมกันเรียนจริงคำเม็ดเชคุณเปลี่ยนเปลี่ยนครับหักตอนหนาอ่อนหย่อนเช้านัดกุกเจจุ้งมือไหวเธอช่องเจ้าตีนองเปลี่ยนหวงเริ่มที่เบื่อเนื่นเข้าหนาวมีเมาเพือเฮ็ดเยอะมาเยิงเมืองที่อยู่นี่กินนอนหม่อนเสียงโหคำตั้งจอมทีมันหนาที่เบื่อเตียวจังหวะเปิงในนุ่งไทยพ้นขาวน้ำเมานางทำเจ้าปำเปิดตราสร้างโวยเขาเอ่ยชูเจ้าหนาวเขากายาตราหน้าตุ่งสองหูยังตู้วนหน้าผ่ารู้ตาสองโวยเอาสางในตาเสียวเสียเสียงเอตุ้มหมอกจ้อจวนก่อนปันเปิ้นตังนิบจริงจริงเมาโกรธหูว่างวางตั้งใต้ถึงโตชิงเมาหย่อนปู่ท่านขันดันเฮียงโคมยินโจมอุ้มหามยาลุมพีเฮากว่านี่ร่างขัดช้างหางบ่องรองตาหนายุ่นกักเตียงมีอาหารเตียงเราขึ้นโคมคุณหงยาจะทำมาเจ้าพี่น้องดูขวัญชิงคอยตาคำก่อนร่าเมื่อเก่าเฮาหามาถึงเนื้อจองมีปองสมวันเตียงพร้อมข้ามเจ้าใครในตาจนในสุดล้านวีท่านหางเที่ยวเที่ยววงปวงเยืองหน้าป่วยเมืองรู้จุงสิบเที่ยวเที่ยวตังปังปำคำอาบทุกอักกีนาสันท่ารวมครบประโยคุ้งสาธุเอาจะสวยสู้นอ
0: ตอบ हमें इजाजत दीजिए नमस्कार अलविदा शब आखिर
2: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम नोटिस परिचय यहीं पर समाप्त होता है आइए आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को

0: श्रोताओ, आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism.

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s टू 80s तक, और मैं हूं आपकी रेडियो साथी गीची कनिका। दोस्तों, पुराने दौर के गीतों की बात ही कुछ और होती है। इनमें प्यार की मासूमियत भी है, शरारत भी है और दिल को छू लेने वाली मधुरता भी। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं 70s के दशक के एक बेहद चुलबुले और रोमांटिक नगमे के साथ। फिल्म कल आज और कल का ये गीत रणधीर कपूर और बबीता पर फिल्माया गया था। शंकर जय किशन के मधुर संगीत और नीरज के खूबसूरत बोलों से सजा ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। तो आइए दोस्तों, मुस्कुराइए और पुराने सुनहरे दौर की यादों में खो जाइए। किशोर कुमार और आशा भोसले की दिलकश आवाजों में सुनते हैं इस गीत को।

0: करती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: हाय,
2: आप यहाँ आए किस लिए,
1: अरे आपने बुलाया किस लिए,
2: आए हैं तो काम भी बताइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: आप यहाँ आए किस लिए,
1: आपने बुलाया किस लिए।
2: अच्छा

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार तो

Ezer'e bak mıskıray. Ezer'e bak mıskıray. Ezer'e bak mıskıray.

0: दोस्तों, हिंदी क्लासिक म्यूजिक में अब बारी है एक ऐसे सदाबहार नगमे की जिसे सुनते ही दिल तहर सा जाता है। प्यार, इंतजार और साथ बिताए पलों की खूबसूरत भावना को बेहद नजाकत से बयां करता है ये गीत, और आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों, 1961 की सुपरहिट फिल्म हम दोनों का ये गीत देव आनंद और साधना पर फिल्माया गया था। जयदेव के मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी के खूबसूरत बोलों से सजा ये नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की जुदाई आवाजों का अनमोल संगम है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोता दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक पर, और आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में एक बहुत ही लोकप्रिय गीत फिल्म कयामत से कयामत तक से।

दोस्तों, इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस पुराने दौर के इन मधुर और सदाबहार गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और यादों के कई खूबसूरत पन्ने खोल दिए होंगे। दोस्तों, पुराने गीतों की महक हमेशा हमें हमारे साथ रहती है, क्योंकि ये सफर सुर नहीं बल्कि एहसासों का खजाना होते हैं। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक नए संगीत के सफर का, तो बने रहिए मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक के साथ, क्योंकि अब शुरू हो रहा है हिंदी फिल्मी गीतों का रंग बिरंगी कारवां, जहां सुनेंगे बॉलीवुड के सुपरहिट और दिल को छू लेने वाले कुछ नगमे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं सुरों का सिलसिला और शुरू करते हैं हिंदी फिल्मी गीतों को। सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म हेलो ब्रदर्स से।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज। 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे RNFM 103.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।

0: and will remain so.
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
3: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3,000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100

0: कस्बे की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर

0: शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका एक ऐसे सफर में जहां हर धुन के साथ जुड़ी है यादें, हर गीत के साथ छुपा है एक एहसास। दोस्तों, ये है आपका अपना खास कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s, जहां हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 90s के सुपरहिट गाने। दोस्तों, वो गाने जो दिल को छू जाते हैं और हमें ले जाते हैं उन हसीन दिनों में। तो तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल जर्नी के लिए, जहां हर सुर होगा नॉस्टैल्जिक और हर पल होगा यादों से भरा। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गीजी कनिक, और चलिए शुरू करते हैं 90s के सुनहरे दौर का ये खूबसूरत सफर। आइए दोस्तों, हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम के आवाजों में फिल्म मैंने प्यार किया से।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, आइए इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म बरसात से।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार,
1: हाय हाय।
0: और जिससे करती हूँ मिन्नतें

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद बारी बारी से यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र द्वारा प्रसारित न्यूज हेडलाइंस। 3:00 आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर प्रसारित होगा थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: chom nang akhing nam nali na studio me chi khan ma wa fa poi nei cha hang me nei kham tai kham ti ho ti khai me studio ho
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। आपको बता दो, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिजी कनिक और आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और फिल्मी दुनिया के हर ताजा खबर, गॉसिप और अपडेट्स लेकर मैं फिर से हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वार एक गंभीर वजह से सुर्खियों में आ गई है। मुंबई में फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर चंद्रधरी सिंह यादव की दुखद मौत के बाद मामला गर्मा गया है। ऑल इंडियन सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICWA ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही संजय लीला बंसाली के खिलाफ FIR दर्ज करने और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की भी मांग की गई है। फिलहाल सभी नजरें इस मामले में होने वाली है, आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। दोस्तों, जिंदगी और सिनेमा दोनों ही अनेक रंगों से भरे होते हैं और इसी बात पर एक खूबसूरत सी लाइन याद आ गई। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा की। दोस्तों, जब फिल्म रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, लेकिन कहते हैं ना, कहानी जब दिल को छू जाए तो उसका असर धीरे धीरे ही सही मगर गहरा जरूर होता है। और दोस्तों, फिल्म ने दूसरे वीकेंड तक अपनी कमाई को 12 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। सबसे खास बात ये रही कि दूसरे सैटरडे को फिल्म ने लगभग 130% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। ऑडियंस की डिमांड इतनी बढ़ गई कि कई सिनेमा चेन्स को नए शोज ऐड करने पड़े। और दोस्तों, इम्तियाज अली खुद अलग अलग शहरों में जाकर ऑडियंस से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों के चेहरों पर फिल्म का असर देखकर बेहद खुश हैं और दर्शकों के

फीडबैक को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और दोस्तों, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जो जल्द ही अपने दूसरे बच्चे के स्वागत करने वाली हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नए मैटरनिटी रिटर्न गाइडलाइंस की जमकर तारीफ की है। आईसीसी ने महिला क्रिकेटर्स के लिए मैटरनिटी के बाद खेल में वापस लौटने को और आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। दीपिका ने इसे एक लैंडमार्क मोमेंट बताया है और कहा है कि इस तरह के कदम महिलाओं को अपना करियर और परिवार दोनों को साथ लेकर चलने में मदद करते हैं। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ ऐसे सकारात्मक बदलाव सच में प्रेरणा देते हैं। और चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी में सिनेमा और संगीत जगत की कई महान हस्तियों को सम्मानित किया गया। दोस्तों, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ममोटी को पद्म भूषण से नवाजा गया। मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को भी पद्म भूषण मिला, जबकि एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सम्मान प्राप्त करने के बाद अलका याग्निक ने अपनी सेहत और रिकवरी के सफर को याद करते हुए एक भावुक संदेश भी दिया। फैंस और म्यूजिक लवर्स उनके हौसले और जज्बे की खूब तारीफ कर रहे हैं। और दोस्तों, अरुण अर्पण की तरफ से इन सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, अब नजर डालते हैं कुछ क्विक बॉलीवुड अपडेट्स पर। तो दोस्तों, बहुत ही चर्चित फिल्म रामायणा को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में फिल्म के स्टार्स रणबीर कपूर और यश एक खास इवेंट में नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नए टीजर और ट्रेलर को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। और मल्टी स्टेलर फिल्म वेलकम टू द जंगल भी रिलीज के लिए तैयार है। खबरें है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को बड़े स्टार पर रिलीज करने की तैयारी में है और सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्सेस तक अधिक शोज अलॉट करने की मांग कर रहे हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ईटा का टीजर इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस फिल्म में वो मशहूर लावनी कलाकार बीटाबाई नारायण गांवकर का किरदार निभाती नजर आएंगी। टीजर को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। और दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान जल्द ही फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ एक नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी भी जारी है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किजी कनिक और आप सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां संगीत भी है, मनोरंजन भी है और हर पल आपका अपना साथ भी। इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट्स यही तक, और आपको अब सुनवाते हैं कुछ प्यार भरे नगमों को।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स यहीं पर समाप्त होता है और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे वांगचो बोली में समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनलेट मनी चा अली तारीख बुधवार इरुमा केम वांचो साय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई भाले मंचुई जामे खमे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी हामा मोनी जी मवे दुमई दम खाउ लंगो करंग मा नकनी बामा तमक तम सा लंगो योलुबनले हायका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री साइपा का पा रणधीर जायसवाल ए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी ब्रिक्स एनएसएस मीटिंग हान पकमा इंडिया तो वांग के मा केम्पांगले वनरे पुले का होमी थामे टिकटोलानले ची हले आपोंगो साउके मा एनएसए डोवल ए अटाटा ची तो के खाखा के चाय का बुबा मा चु खले वनडो को राले हाया खांग मोनी ची रोंग मवे ना मे हेली चु लानले। नेरिस डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र नाथ एस मन इटानगर मा लोक भवन तो ले गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टी पर नैक पाई अपोंगला ले गवर्नर हामा इबा ए नेरिस कैंपस मा लाइक के साय का बुबामा वन को के बोमा लाइनो नौ सम बोमा फैकल्टी मेंबर्स बुरोंग मा ले नमे को ले इंस्टीट्यूट चिमा खंगा माइले वे टिकटो दपु लवन ले हायमा हले के लाइनो नुइमा वालम तोले तुमेले ngo ong ba ma wan ke ma neris society president chu chang ke governor e chu tata la wai chang la neris line not nui maile thamang ke wai le khat lawan le che neris not is ang ke higher and technical line not nui kha kha ma kha kha ke kha yau chang pu le chu wan le che hale ke line not nui to chai ka yang lai ba phai no bu chan to pong ka rai le लाइनोट नौ सम हिया हालके इंस्टीट्यूशन खुई खप अंके पकले खटले टिकले ngong ka vai le chu ka le chief minister pe ma khandu e ani tawang to ke 859 EWS garrison engineer major rohit gogoi ang chief minister's commendation certificate ko le higher commendation certificate major gogoi ang तावांग सेक्टर तो लमसाय पान अमाय के बोमा सिविल मिलिट्री नि बामा तुमाय लम खौ ले चु ना ngo ले अरोंग अमोंग ले मक सा के खम को ले वेस कमिंग डिस्ट्रिक्ट न्युक मदुंग तो के 18 बटालियन सिक लाइट इन्फेंट्री थाम ए गवर्नमेंट आईटीआई दिरांग अंके फाइनल ईयर ट्रेनिस तामान पकमा सेंगे जोंग दिरांग मा मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड फील वर्कशॉप बामा हाडंग टू द बी व्हीकल कैडरे ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले अटुजाले हायर वर्कशॉप मा ऑटोमोबाइल सिया इंजीनियर तंगान वंटी कूलिंग हिया लुब्रिकेशन सिस्टम ले इंडस्ट्री फाइक सतमोट बुबामा पोनो लको ले लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एएलबी लम ओमला ले गारू मखंग लिकाबाली होनुई कप के निबामा

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांगचो बोली में समाचार। वांगचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को।

0: दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे इडुमिश में बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: अभी आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है इडुमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।

एचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुची जान्योलो ईपी लिउलिनी एतानिची इदमिस्मी आहोला किची दरगालंबो इंडिया माचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल में बुनी मैं दिल्ली में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ये गो चौगा गने अतिका ने बगा फूगा अखाकुची पुआ ची चगा ही बदा ला होगा ऐचा में अचंबा गे मा योगे बा थोपुन दिजि पुआ ची चगा ही बदा ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मा ची ला होगा रणधीर जायसवाल में ला होगा नेरिस मा ची डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र नाथ एस में बुनी ईटानगर ची लॉक बॉन मने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पर्णय गो चौगा गने अहम्बया गा नेरिस कोकोमा रुगामी योगा बाचिपुआ लाख गने एचा रुगा नाबा अतु तिगाला दा लाख बदा आहोगा आज हितुमुमा हे खो नोगांगा प्रा अखावे तांदो अरुणदा पुगादा ने गवर्नर में लगाने नेरिस हे आवय तातिकाची आहोयगा आज अहितुमुगे चाउगे आमा रुगामी योगे यो आजो आहेत्याची येचु एले बौशदा लगादा आहोगा ताव मखाजिगा माउंटबेटनने मंगळवारखिनी ई डब्ल्यू एस माचे गॅरिसन इंजिनियर मेजर रोहित गोगोय हे तांग आतिका माचे सिव्हिल मिलिटरी जळगाव मातांद प्रांबा जोगादा लाने चीफ मिनिस्टर पेमा खांदुमे ओना नया सर्टिफिकेट आजपा अवार्ड हा बदा आहोगा न्यूक मदुंगमाचे हुलुयु सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आरोगा गने तिरांग माचे सेंगजोंग आतिको ने गाड़ी अप्रोची पो इंगुनी के बने ट्रेनिंग आहिगा मा तिरांग आईटीआई माचे फाइनल ईयर मा ट्रेनिंग आहि तो इमो नबु में आहि तो का मुदा आहोगा एएलबी आछे लाप्रगे लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट गारु आतिकोने लिकापाली बावे आय छमाचे औ खमा तुते बन्दो अप्रोग बने एता इने अनांगा लिबा आ आय छमा इमु छिगाजी

0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁꯥ ꯌꯨꯝꯕꯗ ꯑꯍꯨꯒ ꯑꯃꯍꯣ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯃꯆꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯥ ꯑꯕꯨ ꯅꯥꯏ ꯅꯥꯏ ꯑꯕꯨ ꯈꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯣ ꯁꯥꯗꯥ ꯅꯦ ꯏꯇꯥꯅꯒꯔ ꯃꯤꯇꯣꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯆꯤ ꯃꯦ ꯂꯥ ꯍꯨꯒ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞ ꯃꯥ ꯏꯪꯂꯦꯟ ꯅꯦ ꯒꯥꯅꯥ ꯑꯦꯕꯒ ꯒꯣꯜ ꯈꯦꯒꯕꯨ ꯍꯥ ꯗꯥꯒ ꯃꯤ ꯃꯦꯁ ꯗꯣꯕ ꯃꯍꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯌꯥ ꯃꯦ ꯄꯅꯥꯃꯥ ꯍꯦ ꯈꯦꯒ ꯖꯤꯔꯣ ꯒꯣꯜ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯀꯣꯂꯣꯝꯕꯤꯌꯥ ꯃꯦꯕꯨ ꯗꯤꯌꯥꯔ ꯀꯣꯡꯒꯣ ꯍꯦ ꯈꯦꯒ ꯖꯦꯔꯣ ꯒꯣꯜ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯅꯦꯒ ꯕꯗꯥ ꯑꯍꯣꯒ ꯑꯃꯍꯣ ꯑꯦꯝꯕꯥꯏꯆꯤ ꯃꯦꯁ ꯃꯥ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜ ꯃꯦ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯦ ꯃꯉꯥ ꯖꯦꯔꯣ ꯒꯣꯜ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯅꯦꯒ ꯕꯗꯥ ꯑꯍꯣꯒ ꯀꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯥꯁꯤ ꯑ ꯃꯦꯁ ꯃꯥ ꯀꯥꯄ꯭ꯔꯨ ꯈꯦꯅꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯣ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯃꯦ ꯒꯣꯜ ꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯒꯅꯦ ꯑꯂꯤꯒ ꯒꯣꯜ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯅꯦꯒ ꯕꯃꯍꯣ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯃꯦ ꯇꯥꯍꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞ ꯇꯣ ꯇꯃꯥ ꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯒ ꯑꯦꯍꯦꯟꯗꯣ ꯏꯃꯨ ꯁꯥ ꯑꯩꯗꯣꯅꯦ ꯕꯨꯅꯤꯆꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯁ ꯁꯥꯝꯕꯗ ꯑꯍꯣꯒ ꯑꯦꯇꯥꯏꯁꯤ ꯏꯗꯨꯃꯤꯁꯃꯤ ꯑꯍꯣ ꯑꯅꯤꯃꯥꯍꯣ ꯅꯕꯥꯏ ꯑꯦ ꯆꯥ ꯑꯥꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯇꯥꯅꯒꯔ ꯗꯤꯕ꯭ꯔꯨꯒꯔ ꯅꯥꯂꯤ ꯏꯗꯨꯃꯤꯁꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯥ ꯑꯦꯆꯝꯇ ꯑꯥꯁꯦ ꯑꯍꯣꯡ ꯁꯣꯈꯤꯌꯥꯃꯥꯍꯣ ꯑꯦꯇꯥꯏ ꯍꯦꯟꯗꯣ ꯔꯣꯀꯤ ꯃꯦꯊꯣ ꯆꯤ ꯆꯥꯁꯦ ꯆꯤ ꯑꯍꯨꯖꯤ
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इडोमिसमी बोली में समाचार। इडोमिसमी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम वन के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब हम हमारी हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को कंटिन्यू करते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा बोली में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों के सफर में यानी हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आरजे नीलम थापा। तो अब आप मुझे यानी

की रेडियो साथी गिजी कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता टिम टिम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस तीसरे प्रसारण सभा में आज मैं हूं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। और हाँ दोस्तों, दूसरे प्रसारण सभा के खूबसूरत सफर का आप आनंद ले रहे थे आपकी अपनी चहेती आरजे गिचिक कनिक के साथ। आरजे गिचिक कनिक स्टूडियो की आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए तीसरे प्रसारण सभा का आरंभ करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

जिंदगी में कोई भी व्यक्ति पूर्ण या परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुरी समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना ना ही सरल, जी हाँ, इतना सरल नहीं है और ना ही इसमें जल्दी सफलता मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कार्यक्रम के तहत बात करेंगे कैसे बुरी आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मैं हूं ना फिल्म का ये गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का जी हाँ कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का पहला गीत आप सुन रहे थे। मैं हूं ना फिल्म से, जिसे आवाज दी है के और वसुंधरा दास ने। और आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम कार्यक्रम के तहत बात कर रहे हैं बुरी आदत से पीछा छुड़ाने के कुछ पहलुओं के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं कि जी हाँ, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस कहावत को ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले बुरी आदतों का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम बुरी आदतों के कारण को जड़ से समाप्त कर देंगे तो बुरी आदत अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमें बुरी आदतों को दूर करने के विभिन्न तरीके ढूंढना चाहिए और ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो सरल और प्रभावी हो। जैसे यदि किसी व्यक्ति को तंबाकू खाने की आदत है तो वो व्यक्ति तंबाकू के जगह सौंप या आंवले खाए तो उसकी तंबाकू खाने की आदत छूट जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपसे तब तक बुरी आदत नहीं छुड़ा सकता जब तक कि आप खुद बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम बुरी आदतों को जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही आपको जकड़ लेती हैं। इसलिए संकल्प ले, आप बुरी आदतों को छोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

जी हाँ श्रोतो मित्र, इस खूबसूरत गीत का आप आनंद ले रहे थे। चुरा लिया है तुमने फिल्म से शान और गायत्री अय्यर की आवाजों में। एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बुरी आदत से पीछा छुड़वाने के कुछ पहलुओं के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी बुरी आदत शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। बुरी आदतों के कारण हमें न केवल शर्मिंदा होना पड़ता है, बल्कि मान सम्मान के साथ साथ तन और मन को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए श्रोता मित्र, आज से ही बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव में आपको सुनवाना चाहेंगे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और नीति मोहन ने। और इसी के साथ ही कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद यानी ठीक 5 बजे आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ करा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्षता के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग सेक्टर में तैनात 859 ईडब्ल्यूएस के गैरिसन इंजीनियर मेजर रोहित कोकोई को मुख्यमंत्री प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिला प्रशासन ने आम जनता, यात्रियों और परिवहन संचालकों के लिए यातायात परामर्श जारी किया। ईटानगर मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कई पानीर जिले के याचाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस बीच विभाग ने राज्य के 3 जिलों के लिए ऑरेंज, साथ ही अन्य कई जिलों के लिए बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो में 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इससे पहले 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2-0 गोल की बढ़त के साथ पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्षता के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग सेक्टर में तैनात 859 ईडब्ल्यूएस के गैरिसन इंजीनियर मेजर रोहित गोगोई को मुख्यमंत्री प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये सम्मान उन्हें उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य, पेशेवर दक्षता, आधारभूत संरचना विकास तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग सेक्टर में नागरिक सैन्य सहयोग के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिला प्रशासन ने आम जनता, यात्रियों और परिवहन संचालकों के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार गारो से लिकाबाली तक का सड़क मार्ग, जिसमें एएलपी रोड भी शामिल है, 24 से 26 जून तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। ये बंदी सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के कारण की जा रही है, ताकि जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और परियोजना का कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। जिला प्रशासन ने सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अस्थायी बंदी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक यात्रा व्यवस्था करने की अपील की है। हालांकि चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी पर तैनात

0: साथ यातायात एवं फील्ड कर्मियों की अनुमति और नियमन के अधीन कार्यस्थल क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और समक्ष प्राधिकारी द्वारा संशोधन किए जाने तक निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा। ईटानगर मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कई पंजोर जिले के याजल क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके कारण नदियों के जलस्तर और प्रवाह में तेज वृद्धि हुई है तथा ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच कई पंजोर जिले के याजल स्थित पौसा क्षेत्र की निपको कॉलोनी में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। लगभग 15 स्टाफ क्वार्टर नष्ट हो गए हैं, जबकि मुख्य राजमार्ग पुल भी बह गया है, जिससे क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था बाधित हो गई है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच विभाग ने राज्य के 3 जिलों पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी और कमले के लिए ऑरेंज, साथ ही तवांग, कुरुंग कुमें, शियोमी, दिबांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर है।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश,
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति से सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री शू ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्य जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टीम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगी। खेदम समेला चान

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ है आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:06 हो रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

श्रोता मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे अंग्रेजी मीडियम फिल्म से विशाल ददलानी की आवाज में। आपको एक बार फिर से बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का। श्रोता मित्र, गीतों के साथ ही एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाना चाहते हैं। तो कहानी इस प्रकार है, एक अंधी लड़की थी जो खुद से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वो अंधी थी। वो सिर्फ अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वो हमेशा उसके लिए हाजिर था, उसका ध्यान रखता था। लड़की कहती थी अगर वो देख सके तो उस लड़के से शादी करेगी। एक बार

किसी ने उसको नेत्र दान कर दिया, वो सारी दुनिया को यहां तक कि अपने प्रेमी को भी देखने लायक हो गई। तभी उसके प्रेमी ने उससे शादी करने की बात की, तब लड़की ने जाना कि लड़का तो अंधा है। उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो लड़का निराशा से ग्रस्त रोता हुआ वहां से चला गया। बाद में उसने उस लड़की को एक खत लिखा और कहा, मेरी आंखों का ख्याल रखना। दोस्तों, जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारे दिमाग भी बदल जाते हैं। कुछ लोग वैसे नहीं देख पाते हैं जैसा वो पहले थे, ना ही वो तारीफ करने लायक रहते हैं। इस कहानी से बहुत सी बातें शिक्षा रूप में ग्रहण की जा सकती हैं। श्रोता मित्रों, ये थी एक छोटी सी कहानी, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और इस प्रेरणादायक कहानी के बाद चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे दिल धड़कने तो, फिल्म का ये गीत सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, फरहान अख्तर और अन्य की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये अंतिम गीत। जी हाँ, बीवी नंबर 1 फिल्म से। लीजिए आनंद इस गीत का।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ट्रैक का ये अंतिम गीत बीवी नंबर वन फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में। किसी की दृष्टि खराब हो जाए तो उसका उपचार संभव है, किंतु अगर दृष्टि कौन ही खराब हो जाए तो उसका उपचार संभव नहीं है। श्रोता मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्रैक का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे जी हाँ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसके साथ ही आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम शाम की महफिल में। जी हाँ श्रोता मित्र, शाम की महफिल कार्यक्रम प्यार भरा एक खूबसूरत संगीत यात्रा। उम्मीद है आप कार्यक्रम के अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। जी हाँ श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यादों की बारात फिल्म के इस बेहद ही खूबसूरत गीत से, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, और गीत के बोल है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम।

श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल, प्यार भरा एक खूबसूरत संगीत सफर का। आपको बता दें कि इस गीत को आप सुन रहे थे प्यार किया तो डरना क्या, जी हाँ, फिल्म से, फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम शाम की महफिल में पुनः स्वागत है। चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म मेट्रो इन दिनों से अरिजीत सिंह की आवाज में। ये बेहद ही खूबसूरत गीत है।

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का ये आखिरी गीत।

इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में दम लगा के हाय साफ फिल्म से। श्रोता मित्र, आशा है कि शाम के महफिल कार्यक्रम के साथ आपकी शाम भी कुछ बेहतरीन बन गई है। उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए गए गीत आप सभी को पसंद आए होंगे। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही शाम की महफिल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि हिंदी फिल्म में गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्स पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित, जिसके तहत आप सुन रहे थे कर्ज फिल्म के कुछ बेहतरीन गाने। आपको बता दें कि इस गीत को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आगे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जी हाँ, इजाजत फिल्म के गाने। इससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

इजाजत फिल्म के इस खूबसूरत गीत का आप आनंद ले रहे थे आशा भोसले की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए, अरुण एफएम के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम आज के कलाकार में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान देने और अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को झकझोरने वाले ऋषिकेश मुखर्जी आज के हमारे कलाकार फनकार हैं। आपको बता दें कि उनका जन्म 30 सितंबर सन 1922 को कोलकाता में हुआ था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में हंसी हंसी में गहरी बातें कह जाती थी और यही वो फिल्मकार हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया था। आनंद, अनुराधा, गोलमाल, बावर्ची, गुड्डी, चुपके चुपके, अनाड़ी जैसी फिल्मों के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी आज के हमारे कलाकार हैं। तो चलिए, उनके बारे में आगे और भी विस्तार से जानने से पहले आपको सुनवाना चाहते हैं उनके फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोता मित्र, इस बेहतरीन गीत को आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में फिल्म आनंद से। ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले अध्यापन करते थे। मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाले ऋषिदा की प्रतिभा को फेमस डायरेक्टर बिमल रॉय ने पहचाना था। कहते हैं कि बिमल रॉय ने कालजयी फिल्म दो बीघा जमीन में सहायक निर्देशक के तौर पर काम शुरू किया था। करीब 6 साल तक बिमल रॉय के साथ काम कर मंच चुके ऋषिकेश ने 1957 में फिल्म मुसाफिर से डायरेक्शन में कदम रखा। फिल्म भले ही नहीं चल पाई, लेकिन ऋषिदा ने अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया। राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि अपनी अगली फिल्म अनाड़ी उनके साथ बनाई। राज कपूर की अदाकारी और ऋषिकेश के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को जबरदस्त सफलता दिलाई थी। तो चलिए इस फिल्म का आपको सुनवाते हैं एक गीत।

अनाड़ी फिल्म के इस सदाबहार गीत का आप आनंद ले रहे थे मुकेश की आवाज में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि ऋषिकेश मुखर्जी की खासियत थी कि अपनी कॉमेडी

फिल्मों के माध्यम से भी समाज को सकारात्मक संदेश देते थे। दर्शकों को हंसाते हंसाते उन्हें जीवन के कड़वे सच से वाकिफ करा देते थे। ऋषिदा ने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद और सत्यकाम जैसी ऑफबीट फिल्में बनाई। अपने फिल्मी जीवन में हमेशा ही नायाब प्रयोग करने वाले ऋषिदा ने मानवीय संबंधों की बारीकियों को सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी पेश किया। ऋषिकेश ने सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि टीवी धारावाहिक भी बनाए। तलाश, रिश्ते, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव और उजाले की ओर जैसे शानदार धारावाहिक बनाए थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्शन का, जी हां, उनके डायरेक्शन का ही कमाल था कि राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, जया बहादुरी जैसे कई कलाकारों को सुपरस्टार बना दिया। उन्हें सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें 6 बार 1961, 1967, 1970, 1971, 1972 और 1981 में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्हें बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी कई बार फिल्म पुरस्कार, जी हां, से सम्मानित किया गया है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं गोलमाल फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से ये बेहतरीन गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि बाबू मुसाई जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी नहीं चाहिए लंबी, माफ कीजिएगा, बाबू मुसाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये जी हां सदाबहार डायलॉग 1971 की फिल्म आनंद का है, जिसका ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशन किया था। भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने भी अपनी जिंदगी को इस डायलॉग की तरह ही जिया, निडर, बेबाक और बेमिसाल। अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने 27 अगस्त 2006 को अंतिम सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि वो अपने काम के जरिए आज भी अमर है। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं, तो इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अनुपमा फिल्म के इस उम्दा गीत के साथ ही हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही पलों में आगे आप सुन पाएंगे निशेष श्रोताओं का समाचार, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी इतारोपोकुमा हिलपोर अलोचेम्युगोला वेप नन इज रूप का कनेबाज रेम थानमेलम अलमेल सुरुंग निशि अंग आरम ओलेंजी ग्रेमा तारगे द ताचो बे सुरुंग शिपुम तापा चोरे जबिरशी धर्म आप

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें कि हिंदी फिल्में गीतों का सफर आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ श्रोता मित्रों, आगे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आई हैड लव स्टोरी फिल्म के कुछ बेहतरीन गाने। तो लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत।

श्रोतो मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में, आई हेट लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। आपको बता दें कि ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन पुनीत

मल्होत्रा ने किया था और इसका निर्माण करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने किया था। और आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं इमरान खान, सोनम कपूर। और इस फिल्म का म्यूजिक, जी हाँ, विशाल शेखर की जोड़ी ने तैयार किया है। और आपको बता दें कि ये फिल्म काफी हिट हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आई हेट लव स्टोरी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, जिसे आवाज दी है विशाल ददलानी ने। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर, और आप सुन रहे थे जी हाँ हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम ले रहे हैं अब एक ब्रेक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 7:35 हो रहे हैं। और जी हाँ श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आगे आप सुन पाएंगे जी हाँ मैंने प्यार किया फिल्म के कुछ गाने, और इसके साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी। इससे पहले आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

मैंने प्यार किया फिल्म का ये बेहतरीन सदाबहार गीत आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। श्रोता मित्रों, इस गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं एक बेहद मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव यानी कि फेस्टिवल में गया, जहां लोग रंग बिरंगे पतंगे उड़ा रहे थे। आसमान में उड़ती रंग बिरंगे पतंगों को देख बेटा भी पतंग उड़ाने जी हां उसे भी पतंग उड़ाने का मन किया। उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूं, प्लीज मेरे लिए पतंग खरीद दीजिए। बेटी की इच्छा पूरी करने पिता पास ही की एक दुकान में गया, वहां से एक सुंदर सी पतंग और डोरी वो अपने बेटे के लिए खरीद लाया। बेटा जी हां दोस्तों, बेटा पतंग पाकर खुशी से झूम उठा। कुछ देर बाद वो भी डोर थामे पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। वो पिता से बोला, पापा ऐसा लग रहा है कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, क्यों ना इसकी डोर काट दी जाए, इससे पतंग आजाद होकर और भी ऊंची उड़ने लगेगी, प्लीज आप इसकी डोर काट दो। बेटी की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, ये देख बेटा बेहद ही खुश हुआ। लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी और एक मकान की छत पर जा गिरी। बेटा ये देख हैरत में पड़ गया। उसने ये सोचकर पतंग की डोर काटी थी कि पतंग आसमान में और ऊंचा उड़ने लगेगी, लेकिन वो तो नीचे गिर पड़ी। इसके बाद उसने पिता से पूछा, पापा ये क्या हुआ, पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बदले नीचे क्यों गिर पड़ी। पिता बोला, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, हवा की गति अनुसार उस तुम डोर खींच कर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद कर रहे थे। लेकिन जब डोरी रूपी सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचकर हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते, दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। उनके बल के बिना सफलता की उड़ान मुश्किल है। बेटी को अपनी गलती समझ आ गई। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जल्दी प्रगति या विकास कर लेंगे या जीवन की नई ऊंचाइयों को पा लेंगे यदि हम अपने घर और परिवार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा परिवार और प्रियजन हमें जीवन में और हमें जीने में और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बुरे समय में परिवार और हमारे अपने हमारा सहारा बनते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें बंधनों में नहीं जकड़ते बल्कि सहारा देते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी खुद से दूर मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का यानी कि मैंने प्यार किया फिल्म का एक और गीत।

0: श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे लव स्टोरी फिल्म के गीत का। आपको बताते कि इस गीत को गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने, और इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के ठीक 8 बज रहे हैं, और इसी के साथ ही अब समय हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को गैर अतः का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके लिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ अपनी मिट्टी की खुशबू यानी कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम सुनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग समुदायों के गीत। तो चलिए एक पल भी देर किए बिना शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत और सुनते हैं ये आदि गीत जिसे गाया है हम सबके फेवरेट तालुत मिजे ने।

तलुत मिजे सर, आपकी आवाज और गीत हमेशा यही फील कराते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हैं और हम गाना के जरिए आपसे बात कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप पता नहीं की। ये गीत है भाई बहन के रिश्ते का, भाई

श्रोता, इस गीत से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब हम अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है, खासकर रुपए पैसे के मामलों में, तो कई बार हमारी जरूरत को फुलफिल करने के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेहनत से हम जितना

भी कमाते हैं जितना भी पाते हैं, उतने में खुश रहने में ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत अरुण FM 103.1 MHz पर अपने रेडियो साथी गैर के साथ।

दोस्तों, माता पिता हमारा पहला गुरु और हमारा वजूद होता है। चाहे हम कहीं भी रहे, अपने दिल से अपने माता पिता का प्यार और ख्याल कभी नहीं खोना चाहिए। इसी तरह अपने माता पिता के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते ये वांचो गीत आप सुन रहे थे बोतिक लुकम की आवाज में। तो आइए अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नोकपन हांगसिक की आवाज में, तुत्सा गीत।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपका अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश के गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जहां एक खूबसूरत लड़की को मर्द अपने बहकने की वजह मानते हैं, वजह बताते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है गालो गीत हम सब के चहेते, जेलिकाई की आवाज में।

0: श्रोताओ, जेली काई द्वारा गाए इसी गालो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सप्ताह में तीन बार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश की विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है युवावाणी कार्यक्रम।
1: यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी की कहानी कोई और ही लिख रहा है। समझ, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजंस हमें हर सीन में डायरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है। आज का हमारा बेहद खास टॉपिक है योर स्टोरी योर पेन। ये टॉपिक हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हम खुद हैं। हमारी हर एक उलझन, हमारी गलतियां और हमारी रुकावटें, ये सब हमारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाती है। तो चलिए इस खूबसूरत और सिनेमेटिक जर्नी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं निजी फुकन के पास, जो कि प्रस्तुत करेंगे योर स्टोरी योर पेन।
2: हैव यू एवर फेल लाइक योर लाइफ इज ऑलरेडी बींग रिटन बाय समवन एल्स, लाइक यू आर जस्ट प्लेइंग अ रोल इन अ स्टोरी यू डिडंट फुली चूज? Like there's a script in your hands, but you didn't write it. Your family, society, expectations, comparisons, all of them seem to be quietly directing scenes of your life. Study this, choose that career, behave like this, be successful by this age, and somewhere in between all this,

श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे कुछ हिंदी गाने और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा वाणी। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं। और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में तहे दिल से स्वागत है। भूले बिसरे गीत के सफर में चले अब आपको लिए चलते हैं, जहां हम आपको सुनवाएंगे पुराने लेकिन बेहतरीन नगमे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवाएंगे ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म के गाने। जी हाँ, जिसे गाया है आशा भोसले ने और इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने, और इस गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र कृष्णा ने। और इस गीत के बोल हैं, ए मेरी बेखुदी बता तू ले चली कहाँ, आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म के गाने। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने। जी हाँ, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का, बेहतरीन गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्रों, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी द्वारा लिखा हुआ और सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया हुआ ये गीत। जी हाँ, पहला पहला प्यार। और आपको बता दें कि ये गीत है बदतमीज फिल्म से, जो प्यार की शुरुआत की मासूमियत और व्याकुलता को दर्शाता है। लीजिए प्रस्तुत है ये बेहतरीन गीत बदतमीज फिल्म से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में घूंघट फिल्म का ये गीत। तो श्रोता मित्र, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जाल फिल्म से।
1: चुके हम दिल नजराना दिल का

0: दिल का।
1: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे जाल फिल्म का एक गीत गीता दत्त और किशोर कुमार की आवाजों में। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के अब हम कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। तो लीजिए इसी के साथ ही कार्यक्रम का ये आखिरी गीत दिल तेरा दीवाना फिल्म से, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये आखिरी गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये गीत। इस गीत के साथ अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की समाप्ति पर आ पहुंचे हैं और आप सभी से अलविदा कहने का समय भी हो चला है। इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक पी तोले तथा तकनीकी अभियंता तना आतुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। जाने से पहले श्रोता मित्र ये भी बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को। तो आप जुड़े रहे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आपसे होगी फिर मुलाकात कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार है, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां

0: प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा?
0: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते
1: जी
0: हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना
1: जी
0: होगा
1: जी
0: और वो नित्य नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था।
1: जी
0: पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हो, आसपास में हो, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त

0: भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है, जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए, ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और
1: जी
2: मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
1: जी जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी ऐसा मैं सोची थी, पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, so that's why I work on these stuff and yeah, I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
3: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
3: It was something that I never dreamed of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
4: तो ये मौका मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, कि हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ कैन डू, हाँ सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी ना एक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट रहे थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे।

0: उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि आंख पे ऊपर हो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना
0: जी
1: चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए उनका। साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था। तो तभी मैं तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था, वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे। तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है। तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था। तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है। तो
1: बिल्कुल
2: इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया, तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
1: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था, उन्होंने बोला कि मेरे फादर को, उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत का
1: जी
2: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है। तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण, बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आप कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको

0: एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
0: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रिर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रिर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है

0: की अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इस बीच ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के समन्वय से विकसित की जा रही है। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी के मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The projects aimed at boosting economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination and speedy resolution of pending issues. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in emission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. He called for regular updation of project details, utility information, infrastructure layers and clearances on the portal to ensure real-time monitoring and improved coordination among agencies. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi today. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. Dr. Jaishankar also met Director of National Security of South Korea, Wee Sung-lak, this evening. In a social media post, the minister said

0: through the waterway following months of disruption linked to regional conflict. According to the IMO, more than 11,000 seafarers remain stranded in the region and are expected to be assisted under a phased evacuation and transit plan. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damages at Nipko Colony in Ghazali Circle under K.E. Panyar District today. As per latest reports, four people are missing. Authorities have not yet confirmed any casualty as they are assessing the extent of the damage. Details are awaited. Head of Project Nipko has informed 17 people have sustained injuries, including three in critical condition. The critically injured patients have been evacuated to Zero by ambulance for treatment. As per input from K. Panyar, Deputy Commissioner Shweta Nagarkoti Mehta, the affected area remains inaccessible from both the Azali and Hodgepodge sides due to landslides. Chief Minister Pema Khandu has extended his condolences to all those affected and the families anxiously awaiting news of their loved ones. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Vaishnavi. मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीड के साथ व्यापार वार्ता प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को मिलकर काम करना चाहिए। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के समन्वय से विकसित की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित

0: आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। नाविकों को इस पहल से चरणबद्ध निकासी और पारगमन योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने की उम्मीद है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक ईरान की गैर जरूरी यात्राओं से बचे। एक रिपोर्ट।
1: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खाड़ी देश की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में हाल ही में हुई अमेरिका ईरान कूटनीतिक प्रगति, होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। 3 दिन के खाड़ी दौरे के दौरान रूबियो कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि 2 दिन की बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: यूक्रेन की सेना ने रूस के एक प्राकृतिक गैस परिशोधन संयंत्र और 2 उपग्रह संचार केंद्रों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार इस हमले में ओरेनबर्ग गैस परिशोधन संयंत्र को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना ने रात भर में 323 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में ये लगभग $60 अरब तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: कांगो में इबोला के अब तक 1094 मामले सामने आए हैं। इससे अब तक 277 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक महामारी रिपोर्ट में साप्ताहिक आधार पर पुष्ट किए गए मामलों में वृद्धि दर्ज की है। युगांडा में भी एक इबोला मामले की पुष्टि हुई है, जिससे वहां मामलों की संख्या 20 हो गई है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को स्वास्थ्य आपातकाल जैसी गंभीर चुनौती बताया है। कई देशों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है।